साधु के अन्न अवसान मिनित्तु केपे आदरणीय माउपियन वेनु वेन सुगायन वेन कवि देक पिन तुन्ने आदरणीय अम्मा पच्ची सिहे त्यागन ओबट पिंकरन अबट पिंकरन मट दो ओबट द जीविते दुन्न पिन बर मैनियन प्यानन हम हद मट द पुराम जीविते तिबन तुर बलागंट मालु मट मट महापाट गिहिं दान देपा होरने अबट हेन्नेम नरक देवल पुरन राहिस कम्मल पिच्चिल मेरुन तात्र पिच्चिल मेरुन केनिसा देमाउपियो केला कियान्नी लेडे उनत खटायद गहुनत రోగి అవసాన ఆశీర్వాద కవి దిక హెమద నామ సాధు కేమి.